कुछ धर्म है शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जी धर्म है शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले।